पीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: on how this new terminal would actually benefit the people of Ladakh.
1: साथियों, कुछ समय पहले मैंने लेह के कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ही इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का